गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजीनगर. एक्झॅक्टली 7:12 वेळ झाली आणि तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM. आरजे अदनान तुमच्यासोबत आलाय तुमची आजची ही मॉर्निंग गुड करायला. मग कस का एकदा मस्त मजेत फर्स्ट क्लास असालच, तुम्ही असायलाच पाहिजे यार, कारण की तुम्ही ऐकताय MGM रेडिओ, देन एव्हरीथिंग इज फर्स्ट क्लास. उठा उठा, सकाळ झाली आणि नवीन दिवस सुरू करण्याची ही वेळ आलेली आहे. आणि आजचा दिवस सुरू करायला काहीतरी पॉझिटिव्ह सुविचार पाहिजे ना, तर ही वेळ आहे सुविचार ऐकायची. तर आजचा मॉर्निंग मंत्र मध्ये सुविचार आहे, जिंदगी में सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से घबरा कर रुकते नहीं बल्कि हर दिन एक नई शुरुआत करते हैं. सुप्रभात. एग्जैक्टली सही बात है यार, सफलता तो उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से घबराती नहीं है और रुकते नहीं, वरना अक्सर लोग ना छोटी बड़ी मुश्किल आए तो रुक जाते और कहते यार अब मुझसे नहीं होगा. लेकिन जब आप कहते ना मुझसे नहीं होगा, वहीं से एक नई शुरुआत आप कर सकते हो. एक नई शुरुआत के तौर पर बस हारना नहीं है, करते रहना है, क्योंकि एक दिन जरूर होगा. इसी पॉजिटिव वाइब के साथ आज की शो का आगाज करते हैं. कुछ मेरी और कुछ आपकी बात करते हैं और ढेर सारे गाने भी एंजॉय करते हैं विद आरजे अदनान इन द शो.

0: got it. Thank you.
1: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए.
2: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन.
3: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन. विजिट MGM कैंपस, N6 सिडको, छत्रपति.

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस, N6 सिडको, छत्रपति।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: वो दिन कुछ खास नहीं था, या शायद सब कुछ खास था। मैं एक छोटी सी चाय की दुकान पर खड़ा था, हाथ में चाय का कप था और दिमाग में ढेर सारी परेशानियां, काम की टेंशन, भविष्य की चिंता और कुछ अधूरे सपने। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी कहीं अटक सी गई है। तभी मेरे पासों में एक बुजुर्ग आकर खड़े हुए। उन्होंने चाय का एक घूंट लिया और मुस्कुरा कर बोले, बेटा बहुत परेशान लग रहे हो। मैंने भी हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हाँ बस जिंदगी कुछ टेंशन में है। उन्होंने सर हिलाया और सड़क की तरफ देखते हुए कहा, देख रहे उस चाय वाले को? मैंने कहा हाँ। वो बोले, सुबह से शाम तक कितने लोगों को चाय देता है, लेकिन हर कप के बाद फिर से नई चाय बनाता है। कभी ये नहीं सोचता कि पिछली चाय ठंडी थी, खराब हो गई या किसी ने पसंद नहीं की। मैं चुप था। फिर उन्होंने कहा, जिंदगी भी ऐसी है, जो बीत गया वो बीत गया। हर सुबह तुम्हें एक नया कप मिलता है। अब ये तुम पर है कि उसे शिकायतों से भरते हो या उम्मीदों से। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। इतनी गहरी बात शायद मैंने किसी किताब में भी नहीं पढ़ी थी। चाय खत्म हुई, मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन वो जा चुके थे। ना नाम पूछा ना पता, बस एक अनजान इंसान आया, एक चाय पी और जिंदगी का नजरिया बदल कर चला गया। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े सबक हमें उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनसे हमारी मुलाकात सिर्फ कुछ मिनटों की होती है। तो हर सुबह एक नया कप चाय है, उसे कैसे जीना है ये फैसला आपका है।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपने सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल alumni नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA Multimedia Journalism, BA International Journalism and Electronic Media, PG Diploma और MA Broadcast Communication। Visit MGM Campus, N6 सिडको, छत्रपति।

फरमाइश और फरमाइश आपकी फरमाइश सराकों पर. यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM. RJ अदनान आपके साथ है और यहाँ पर मैं आपकी फरमाइशें पूरी करता हूँ. तो आज हमारे पास हमारे एक लिसनर की फरमाइश आई है. अमोल काड़े इनका नाम है और बहुत ही जोशीले गाने की फरमाइश की है. 80s के दशक का वो सदाबहार डिस्को नंबर जिसको सुनने के बाद ना तो पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं. तो पेश है फिल्म अरमान से जो कि 1981 में आई थी, उस फिल्म का ये धमाकेदार गाना.

गाने को गाया था द क्वीन ऑफ पॉप उषा उत्थुप जी ने और संगीत दिया था डिस्को किंग बप्पी लहरी जी ने। आइए सुनते हैं फिर इस सदाबहार 80 के दशक के डिस्को नंबर की फरमाइश वाला सॉन्ग। अगर आपकी बहस कुछ फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर 9359320080। बिंदास अपनी फरमाइशें बताइए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

0: भाई सुनना, तेरा टेलीग्राम चल रहा है यार, मेरा तो चल ही नहीं रहा। मतलब आजकल दोस्तों में ऐसी बातें शुरू है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान। और टेलीग्राम फिलहाल बंद हो चुका है अपने इंडिया में। और क्यों बंद हुआ है पता है? देखो टेलीग्राम ना तो आज के वक्त में बहुत सारे लोग यूज करते हैं, और स्पेशली ना तो मूवी डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होता है। इसी के साथ कुछ क्लासेस अपने नोट्स, ऑनलाइन क्लासेस, उसकी वीडियोस टेलीग्राम के ऊपर अपलोड करते हैं। एंड टेलीग्राम एक ऐसा मैसेजिंग ऐप है जहां पर सबसे ज्यादा पेपर लीक के केसेस सामने आए हैं। तो इसी वजह से अभी 21 जून को नीट एग्जाम है। सो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल बैन लगा दिया है। जब तक नीट एग्जाम नहीं होती तब तक, यानी कि तकरीबन 22 जून 2026 तक टेलीग्राम बंद रहेगा इंडिया में पूरी तरीके से। अथॉरिटीज का कहना है कि कुछ चीटिंग रैकेट ना तो टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे, और टेलीग्राम का मैसेजिंग एडिटिंग फीचर भी है जो कि टेम्पररी रूप से डिसेबल करने को कहा गया है। और अपने इंडिया में तकरीबन 15 करोड़ से भी ज्यादा टेलीग्राम यूजर्स है, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा टेलीग्राम यूज करने वाले लोग वही है जो कि मूवीज डाउनलोड करते हैं। आपको हर एक मूवी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम इंडिया में इतना फेवरेट क्यों हो गया पता है? क्योंकि व्हाट्सएप पर ना तो हम लिमिटेड फाइल सेंड कर सकते थे, एक लिमिट के बाद 1 GB के ऊपर की फाइल वहां पर सेंड नहीं होती थी, लेकिन टेलीग्राम पर ऐसा कोई लिमिट नहीं था, कितनी भी बड़ी फाइल वहां पर हम फॉरवर्ड कर सकते थे। इस वजह से इंडिया में टेलीग्राम बहुत फेमस हो गया था, और इसका गलत तरीके से भी यूज हो रहा था। तो इसी बात को फोकस करते हुए और नीट में इस बार कोई गड़बड़ ना हो आणि नीट पद्धति ने व्हावी यासाठी सध्या टेलीग्राम बंद आहे। तरी गोष्ट लक्षात ठेवा एंड ऐकत रहा। आपण इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन किंवा जपानी शिकायचं स्वप्न पाहताय की अरेबिक, संस्कृत, मराठी आणि उर्दू यांसारख्या भाषांमध्ये निपुण व्हायचंय?
1: तर मग MGM युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन अँड फॉरेन लँग्वेज मध्ये आपलं स्वागत आहे।
2: अवेलेबल कोर्सेस BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इन इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उर्दू अँड संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन क्रिएटिव्ह रायटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जपानीज, पर्शियन अँड ट्रान्सलेशन, यासोबतच विविध सर्टिफिकेट कोर्सेस सुद्धा उपलब्ध।
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, आजच भेट द्या www.mgmu.ac.in
2: किंवा कॉल करा 9763679245, 9665353515 और 9371714259।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
4: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
4: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
3: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
5: Is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

हम सभी कभी ना कभी कोई ना कोई बुक तो जरूर रीड करते हैं और कुछ किताबें ना तो हमारे दिल को छू जाती है, ऐसा होता है ना आपके साथ भी। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और कुछ किताबें दिल में ऐसी समाई जाती है कि हमेशा वो याद रहती है और उस किताब के बारे में हम अक्सर बात करते हैं एंड अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करते हैं। तो कौन सी आपने ऐसी किताब पढ़ी है और क्या कुछ आपको उसमें से सीखने को मिला है और उसका रिव्यू अगर आपको देना हो तो आप किस तरीके से दोगे, तो यही मौका मैं आपको दे रहा हूँ वाचन प्रेरणा दिना निमित्त ने 19 जून ते 19 जुलाई या दरमियान वाचन प्रेरणा दिन साजरा करना होता याद तुम्ही वाचलेल्या आवडत्या पुस्तकाचा रिव्यू करायचा असेल तुम्हाला तर तुम्ही इथे येऊन ते करू शकता किंवा त्या पुस्तकातील कोणता असा मजकूर आहे, कोणसा ऐसा चॅप्टर आहे या कोई ऐसा किरदार आहे जो आपको बहुत पसंद आया तो उस बारे में अगर आपको बात करनी है तो वो भी आप रेडियो पर बात कर सकते हो, आपकी कहानी उस किताब के बारे में हमें बता सकते हो या फिर आप हमें आपकी रिकॉर्डिंग भेज सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। क्योंकि कुछ किताबें बस पढ़ी नहीं जाती, वो दिल में समाई जाती है, वही दिल में समाई हुई किताबों की कहानी आप पूरे शहर को सुना सकते हो। तो देर मत कीजिएगा, अभी कॉल करें 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर या मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर या फिर आप डायरेक्टली हमारे स्टूडियो आ सकते हो MGM 90.8 FM रेडियो स्टेशन MGM यूनिवर्सिटी N6 को छत्रपति संभाजी नगर। सो ये मौका अपने हाथ से मत गवाइए एंड सुनते रहिए।

बॉलीवुड की गलियों से आज एक गर्मा गर्म गॉसिप लेकर आपके लिए आया हूँ। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और सबसे पहली बात उस फिल्म की जिसके फैंस ना तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लव एंड वॉर। खबर है कि रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल एक ग्रैंड सॉन्ग शूट के लिए फिर से एक साथ आ रहे हैं। फिल्म अपने फाइनल फेज पर पहुंच चुकी है, फैंस की एक्साइटमेंट ऑलरेडी एकदम पीक पर है, लेकिन अब तक ना इसकी रिलीज डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। और बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा धीरे धीरे ऑडियंस के दिल जीत रही है और कलेक्शन में भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। क्या ना भैया और भाभी जी, भाई साहब, दीदी और सभी दोस्तों, आपने इम्तियाज अली की फिल्म जब रिलीज होती है तब नहीं देखते, बाद में फिर 5-6 साल के बाद री रिलीज होती तब कहते हो यार अंडररेटेड मास्टरपीस था, वक्त के पहले आ गया। भाई वक्त पर ही आया है, जाकर देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन फिल्म है। और उधर शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 भी काफी बज़ में है, फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है और रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर डिस्कशन का टॉपिक बन चुकी है फिल्म। और भी ऐसी गॉसिप के लिए और बहुत सारे एंटरटेनमेंट के लिए मैं तो आपके साथ हाजिर रहूंगा यहाँ पर, लेकिन कुछ ही देर के बाद। फिलहाल एंजॉय कीजिएगा आने वाला सुपर हिट गाना एंड स्टे ट्यून।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान। हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM। साथ है तो

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: FGM 90.8 FM साथ है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एफएम 90.8।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
0: साथ है तो

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एफएम 90.8।

0: खुशी,
1: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
2: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM,
3: साथ है तो बात है।

है आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शाम का ये खूबसूरत वक्त लेकर आया है कुछ सुकून, कुछ मुस्कान और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स। दिन भर की भागदौड़, काम का दबाव और जिम्मेदारियों के बीच अगर आप खुद के लिए थोड़ा सा समय निकाल ना पाए हो तो यकीन मानिए आपने आज का सबसे अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि अब वक्त आपका है। अब सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, आसमान अपने रंग बदल रहा है और हवा में एक अलग ही ठंडक और ताजगी महसूस हो रही है। ऐसे समय में ज़रूरत होती है बस कुछ अच्छे गानों की जो आपके मूड को थोड़ा बेहतर बना दे। तो चाहे आप ऑफिस से घर लौट रहे हो, परिवार के साथ चाय का आनंद ले रहे हो या फिर अपने मन पसंदीदा कोने में बैठ कर थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो, हम हैं आपके साथ इस शाम को और भी खास बनाने के लिए। याद रखिए, ये हर दिन परफेक्ट नहीं होता लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है, इसलिए दिन कैसा भी रहा हो इस शाम को एक नई शुरुआत की तरह महसूस कीजिए। थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ा सा संगीत और ढेर सारी अच्छी सोच, यही है हमारी गुड इवनिंग वाइब्स। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अब आने वाले हैं कुछ ऐसे शानदार गाने जो आपकी शाम को और भी खूबसूरत बना देंगे। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कभी आपने गौर किया है कि हम पूरे दिन कितने लोगों से बात करते हैं, दोस्तों से, परिवार से, सहकर्मियों से, लेकिन एक इंसान है जिससे हम सबसे कम बात करते हैं, वो है हम खुद। जी हाँ, खुद से बात करना कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि ये अपने मन को समझने और खुद को बेहतर जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब हम कुछ मिनट अपने साथ बिताते हैं, अपने दिन के बारे में सोचते हैं, अपनी खुशियों और परेशानियों को समझते हैं, तब कई सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लगे रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम खुद क्या महसूस कर रहे हैं। कभी कभी बस खुद से पूछ लीजिए, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या चीज़ मुझे खुशी देती है, क्या मैं अपने लिए थोड़ा समय निकाल पा रहा हूँ। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे सवाल आपको अपने और करीब ले आएंगे, और जब आप खुद को समझने लगते हैं तो जिंदगी की उलझने थोड़ी आसान लगने लगती है। तो इस शाम कुछ पल अपने लिए निकालिए, फोन को थोड़ा साइड में रखिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल की आवाज सुनिए, क्योंकि कभी कभी सबसे जरूरी बातचीत वही होती है जो हम अपने आप से करते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ अब आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ अमेजिंग गाने ओनली ऑन MG Mnadi Pondy FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। जिंदगी में हम अक्सर बहुत कुछ खोजते रहते हैं, अच्छी नौकरी, बेहतर मौका, नए रिश्ते और सफलता, लेकिन इस दौर में एक खोज ऐसी भी है जो सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है खुद की खोज। कभी कभी हम दूसरों की राय, उनकी उम्मीदों और समाज के बनाए हुए रास्तों पर चलते चलते ये भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और क्या चाहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान के अंदर एक अलग पहचान, एक अलग कहानी और एक अलग हुनर छुपा होता है। तो क्यों ना आज थोड़ा रुक कर खुद से मिले, अपनी पसंद नापसंद को समझे, अपने सपनों को फिर से याद करे और उन बातों पर ध्यान दे जो आपके चेहरे पर सच्ची मुस्कान लाती है। तो खुद की खोज में निकल, क्योंकि जब तुम खुद को जानने लगते हो तो मंजिलें भी साफ दिखने लगती है। रास्ते आसान नहीं होते, लेकिन खुद पर भरोसा होना भी बहुत जरूरी होता है। हर सफर खूबसूरत बन जाता है। इससे याद रखिए, दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी पहचान मत खोइए। दुनिया आपको क्या समझती है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को क्या समझते हैं। तो इस शाम खुद के साथ कुछ पल बिताइए, अपने दिल की सुनिए, अपने सपनों को आवाज दीजिए और एक कदम अपनी असली पहचान की ओर बढ़िए। इसी खूबसूरत वादे के साथ, इसी खूबसूरत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ शानदार गानों की तरफ। ओनली ऑन MJ 90.8 FM साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं और ऐसा ही एक खूबसूरत गाना घर मोरे परदेसिया। इस गाने में प्यार है, इंतजार है और अपनेपन की एक बेहद ही प्यारी भावना है। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जिसके आने से लगता है जैसे दिल को उसका अपना ठिकाना मिल गया हो, बरसों का इंतजार खत्म हो गया हो और मन यही कह उठे कि अब देर मत करो, घर आ जाओ। यही एहसास इस गीत के शब्दों में बहुत खूबसूरती से झलकता है। इस गाने की खास बात सिर्फ इसका संगीत नहीं बल्कि इसकी भावनाएं हैं। भारतीय संस्कृति की मिठास, रिश्तों की गर्माहट और प्रेम की मासूमियत हर सुर में महसूस होती है। यही वजह है कि जब भी ये गीत बजता है दिल अपने आप उसकी धुन के साथ बहने लगता है। और सच कहे तो घर सिर्फ एक जगह नहीं होती बल्कि वो एहसास होता है जहाँ हमें अपनापन और सुकून मिलता है, कभी किसी इंसान में, कभी किसी रिश्ते में और कभी किसी याद में। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी खास की यादों में खोए हुए हैं या अपने दिल के करीब किसी एहसास को महसूस करना चाहते हैं तो ये गीत आपकी शाम को और भी खूबसूरत बना देगा। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

भाई सुनना, तेरा टेलीग्राम चल रहा है यार, मेरा तो चल ही नहीं रहा। मतलब आजकल दोस्तों में ऐसी बातें शुरू है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान। और टेलीग्राम फिलहाल बंद हो चुका है अपने इंडिया में। और क्यों बंद हुआ है पता है? देखो टेलीग्राम ना तो आज के वक्त में बहुत सारे लोग यूज करते हैं, और स्पेशली ना तो मूवी डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होता है। इसी के साथ कुछ कुछ क्लासेस अपने नोट्स, ऑनलाइन क्लासेस, उसकी वीडियोस टेलीग्राम के ऊपर अपलोड करते हैं। एंड टेलीग्राम एक ऐसा मैसेजिंग ऐप है जहां पर सबसे ज्यादा पेपर लीक के केसेस सामने आए हैं। तो इसी वजह से अभी 21 जून को नीट एग्जाम है। सो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल बैन लगा दिया है। जब तक नीट एग्जाम नहीं होती तब तक, यानी कि तकरीबन 22 जून 2026 तक टेलीग्राम बंद रहेगा इंडिया में पूरी तरीके से। अथॉरिटीज का कहना है कि कुछ चीटिंग रैकेट ना तो टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे, और टेलीग्राम का मैसेजिंग एडिटिंग फीचर भी है जो कि टेम्पररी रूप से डिसेबल करने को कहा गया है। और अपने इंडिया में तकरीबन 15 करोड़ से भी ज्यादा टेलीग्राम यूजर्स है, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा टेलीग्राम यूज करने वाले लोग वही है जो कि मूवीज डाउनलोड करते हैं। आपको हर एक मूवी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम इंडिया में इतना फेवरेट क्यों हो गया पता है? क्योंकि व्हाट्सएप पर ना तो हम लिमिटेड फाइल सेंड कर सकते थे, एक लिमिट के बाद 1 GB के ऊपर की फाइल वहां पर सेंड नहीं होती थी, लेकिन टेलीग्राम पर ऐसा कोई लिमिट नहीं था, कितने भी बड़ी फाइल वहां पर हम फॉरवर्ड कर सकते थे। इस वजह से इंडिया में टेलीग्राम बहुत फेमस हो गया था, और इसका गलत तरीके से भी यूज हो रहा था। तो इसी बात को फोकस करते हुए और नीट में इस बार कोई गड़बड़ ना हो आणि नीट पद्धति ने व्हावी यासाठी सध्या टेलीग्राम बंद आहे। तरी गोष्ट लक्षात ठेवा एंड ऐकत रहा।

बॉलीवुड की गलियों से आज एक गर्मा गर्म गॉसिप लेकर आपके लिए आया हूँ। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और सबसे पहली बात उस फिल्म की जिसके फैंस ना तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लव एंड वॉर। खबर है कि रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल एक ग्रैंड सॉन्ग शूट के लिए फिर से एक साथ आ रहे हैं। फिल्म अपने फाइनल फेज पर पहुंच चुकी है, फैंस की एक्साइटमेंट ऑलरेडी एकदम पीक पर है, लेकिन अब तक ना इसकी रिलीज डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। और बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा धीरे धीरे ऑडियंस की दिल जीत रही है और कलेक्शन में भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। क्या ना भैया और भाभी जी, भाई साहब, दीदी और सभी दोस्तों, आपने इम्तियाज अली की फिल्म जब रिलीज होती है तब नहीं देखते, बाद में फिर 5-6 साल के बाद री रिलीज होती है तब कहते हैं यार अंडररेटेड मास्टरपीस था, वक्त के पहले आ गया। भाई वक्त पर ही आया है, जाकर देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन फिल्म है। और उधर शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 भी काफी बस में है, फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है और रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर डिस्कशन का टॉपिक बन चुकी है फिल्म। और भी ऐसी गॉसिप के लिए और बहुत सारे एंटरटेनमेंट के लिए मैं तो आपके साथ हाजिर रहूंगा यहाँ पर, लेकिन कुछ ही देर के बाद। फिलहाल एंजॉय कीजिएगा आने वाला सुपर हिट गाना एंड स्टे ट्यून।

पहले आप घर से निकल गई थी उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एनजीएम 90.8 एफएम।